0: पर से खड़ी है जो एक गेट आप कतार
1: एयर क्या ब्रांच का है
0: आप मेरे बोला 162 रिटर्निंग 150 रिक्वेस्ट डायरेक्ट बेटर फॉर ओवर कतार
1: एयर व्हिच पॉइंट
0: Qatar Air to the right, Echo. Qatar Air to the right, Echo. Qatar Air to the right, Echo. Qatar Air to the right, Echo.
1: Qatar Air to the right, Echo. Qatar Air to the right, Echo. Qatar Air to the right, Echo. Qatar Air to the right, Echo. Qatar Air to the right, Echo. Qatar Air to
0: the right, Echo. Qatar Air to the right, Echo. Qatar Air to the right, Echo. Qatar Air to the right, Echo. Qatar Air to the right, Echo. Qatar Air to
1: Qatar Air to the right, clear
0: the VS Swamp, golf arrival. So clear the right, better than Swamp, golf arrival, Qatar Air to the right.